आपकी पसंद, आपके एहसास और आपके लम्हों की खूबसूरती, सब कुछ एक ही जगह, जहां हर प्रोग्राम सिर्फ आपके लिए। रेडियो अमन 88.4 खड़क, आपकी अपनी आवाज़।

0: एक ऐसी दौलत है जिससे हम दुनिया की हर चीज खरीद सकते हैं। और तालीम बच्चों का बुनियादी हक है। अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाएं। रेडियो अमन नेटवर्क, जवान रंग अमन।
1: काम करती रही तो हमारी

0: समय कभी खूबसूरत बातों के लिए और कभी नई मालूमात के लिए आपके सुनने का खूबसूरत इंतहा रेडियो अमन 88.4 करक।
1: कारोबार हो या फरमाई, मसाइल का हल हो या सेहत करार, बेक टू बेक हो या खबरें, रेडियो अमन लाता है आपके लिए बेहतर से बेहतरीन नशरियात। सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 की नशरियात, रेडियो अमन नेटवर्क, जवान रंग अमन।
2: क्या आप चाहते हैं कि आपका कारोबार एक नए बुलंदियों तक पहुंचे? क्या आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत का हर लम्हा आपके लिए फायदेमंद साबित हो? तो देर किस बात की, हम आपको दे रहे हैं वो हल जो आपके कारोबार को देगा एक नई रफ्तार। हमारी ये खिदमत आपके कारोबार को नई मार्केट तक पहुंचाने में मददगार साबित होगी।
3: It's 9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.

बाबा खुशी अच्छे तरह मो पवास के भी कहना जरूर भी चेंज का और का पवास के मैंने भी यार तो बख्शना मदरा था कोशिश पकाओ शाम लेकिन हम भाई जाने तो शो दे परा जा स्पेशल दे स्कूल नहीं मतलब छे ना स्कूल ना मामा तले जैसा जा हमेशा दवियां छे दा वक्त छे दा ना इते हाई छे दा कीमती वक्त हास करके दा स्टूडेंट लाइफ ऑफ दा वक्त तेर सी बयान रुसी शो गाने वो चले जी का जिंदगी विच ना पल तालीम दे यानी कि तालीम था फर्स्ट प्रायोरिटी शो गानो था भी आ गए ना रास्ता ठीक है ये वाह रखे जा बिल्कुल देखे मैं वोट नेक्स्ट है शाम स्कूल बो दे शो गानो दे परा ना प्रेज दाई जी कुदरत नो जोड़े मां देवा यो जहान मनना है प्रती कुदरती बच्ची ये एक लतीफा या पहली है जीत का हाथ में साइंसी जवाब नहीं है लेकिन आम तौर पर इस मजहिय जवाब आपकी अपनी हंसी या आईना जब इंसान अपना चेहरा देखे आपकी फेंडे व महसूद ओके जी खुरा के प्रोग्राम रो सारा वोरवा प्रोग्राम आखिर के तो सा जॉब चित नेक्स्ट में चाह कर

0: जी अर्जुन को मुतासर से मुंसर पार्टी से बैठ खबरी से यानी सिफर 336-94-0-764 बांधे और बिरसरा दगा खुलिशान सॉन्ग हम तासो एंजॉय खोली से
1: अर्जुन को तासो सिंगा मुंगा दो गानों की याद सते हो कना कबस थी सिर्फ देवा गिंटा पूरी और बिहार ने लाट से या मोहेर के बिखी दे चाहता पोसने के सिंगे तासो

मला हंदाराजी हाजी अर्जुन को दुआ बोलतो कुकना चला तला दा दग शान मुंग तासो मतलब सुमरमी ना तासु मुंग तरा कला पर खबर को मा चिदा सीमी ना दा अल्लाह तला प दुख पल कोर के हम दा शान लरी और दुई उमर चुकुम दा गा दला तला स्तर के ठीक शोला हा अर्जुन को

वेलकम वेलकम रेहान भाई जमान डिवाल असंग सलाम टू फॉर यहाँ दी अबान रेमल पठाना मोनी था और मह आबरू सब आसिया आफिया हानिया वफा तो वाया परफ्यूम वाला सलाम एट्स मी अनु पठान ओके जी वालेकुम सलाम एंड थैंक यू सो वेरी मच जहान मन ना सलाम टू अजीम के लिखी लाए बहान था दुरहाने माँ माह उम्मीदा दम तोड़ जाती है हर शिकायत लबों पे आकर दम तोड़ जाती है हर शिकायत लबों पे आकर जब मसूमियत से कहते हैं मैं क्या मैंने क्या किया है जमान दुआ दा दरता ची अल्लाह दर जरा एल एल।

हाँ सही रहती था हाँ अरसिमी अनु बना ना ऐसे मोनी स्कूल प्रेस दे चिल्ला जैसे गई तो वका नसियात हुई तो वका

सानिय फॉर्म म्हणून आईची हटक जनाना वाला सांग प्ले का प्लीज. ओके जी वालेकुम सलाम कोशिश पियो कमा प्ले बक मदता ध्यान भाई जी किम यो हवी होचे इतो जिक्र भी पके अमरुबा फातिमा फ्रॉम ने रिपनोस. ओके जी कोशिश पी कमा.

0: लिए।
1: खुश खबरी, खुश खबरी, हुज़ैफ़ा कंपनी वाला शिफा तेल का बड़ा दावा। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में शिफा तेल का जवाब आपको नहीं मिलेगा। शिफा तेल अरब मुमालिक, यूरोपी मुमालिक, मलेशिया, चाइना वगैरह में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। शिफा तेल पुराने गंजेपन के लिए नहीं बल्कि अभी गंजे हो या गंजे हो रहे हो तो शिफा तेल के इस्तेमाल से बाल गिरना बंद हो जाएंगे, नए बाल उगना शुरू हो जाएंगे, बालों को गन्ना लंबा करता है, खारिश, खुश्की, सिकरी खत्म, मर्द औरत दोनों के लिए यकसा मुफीद है।
2: अगर आपके बाल गिरते नहीं, गन्ने लंबे चमकदार भी है, खारिश, खुश्की, सिकरी कोई बीमारी भी नहीं है, फिर भी हफ्ते में एक बार या दो बार शिफा तेल से सर की मालिश करें ताकि आपके बाल सेहतमंद रहे, क्योंकि इंसान के 90% खूबसूरती हुस्न व जमाल बालों पर है।
1: हुज़ैफ़ा कंपनी शिफा तेल, पिशावर, बन्नू, लक्की, करक, डीआई खान, खैबर पख्तूनख्वा, पिंडी, इस्लामाबाद के अक्सर जनरल स्टोर और बेकरियों में दस्तियाब है। नवी दरियाफ शवी ददवा थोरो निशान वाला हुज़ैफ़ा कंपनी शिफा तेल चेसड़ाए वख्तिनाए गंजाए नवी ओसोस गंजे शवी भी याए दसर वेख्तान गुर्जीगी नो अगा सड़ाए चे सो रजे शिफा तेल पखपल सर बांधे मालिश की नो दद पसरबो दोबारा नवी वेश्तान पैदाशी। शिफा तेल वेश्तान गुर्जवल बंदवी वेख्तान गण और उजद कवि देसर खारश खुश्की पीना पखा हम खत्म कवि जनना मर्दना द्वाड़ो दपारा बराबर फायदेमंद। मजीद मालूमातो दपारा पदे नंबर राबिता कवलेशे 0331-397-3636 और बल नंबर दे 0335-352-3333।

हाँ जी नोर बवाइम सा हुजीफा कंपनी शिफा दे अधीन इलावा स्किन पॉलिश दे मख स्पिन वाले दे बरा लिप शेल और स्पिन वाले दे बरा जिदे तो से स्पिन स्पिन महीना शेल और सीना स्पिन स्पिन बिल्कुल जी नोर सा वड़े का नाम अगा पर लास्ट पिन जलास में नटा सा आशा मदो क्या नाम जरूरी है ट्राई के हुजीफा कंपनी शिफा स्किन पॉलिश अजगला अजगला खबर अदर करता।

0: अघि जी दिदी त्यसलाई काल सेटिङ मे गलो न बिल्कुल सेटिङ सय दे छि ओसरो सरो त काल गवले शेप सेफर 330 सेफर 344 717 जी जना बिल्कुल सेफर 330 सेफर 344 717 जी जनाब ननु मिरली तहां से मेरा अनशाता हूं हसी दोसली तो हसी राजमकता हूं हदरी में और जनाब बाका हेल्थ हूं लुटसी खैर है जी नोबेल कला सेफर दरे दरे सेफर सेफर दरे सलोर सलोर उबा यो उबा वालेकुम सलाम जी वालेकुम सलाम जी सो खबर के किम जनाब मानदेव दे मानदेव ना वक्ती ना दे कली ना अतल खमो चे लश्की साबर होगा चे जकाले तरफ तवरा से जबे कालो खाली इंतजार दे होगा का ना
1: इंतजार मो को मेहनत गुजो नंबर में मुखे कता पर स्क्रम
0: में बस हो कलश की गोता में दरसरा कड़ी वाई भी मिलावे दना
1: ना खबर होरे का भी तो गोता कवे दो खने के जरा
0: ए हो जे चा सारा गोते ना का मो ता गोते वाला सी ना के ना जी जी
1: क्या पर खबर।

हाँ जी बिल्कुल आंधे तो चलाओ काल सिलसिला जारी रहो। शिफा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान प्रोडक्ट उस पबा का खेल शे नसीम आमिर बिक्री पबा का खेल शेर तमिल विदायशी और दिन अलावा दुबई कॉस्मेटिक्स बाका खेल शे हदर तमिल विदायशी लाइव कॉल रू तो वकई पर 0330-0344-717। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, सो खबर के किम जी नाम गुलशरीफ रेडियो बन का रेडियो बन का रेडियो बन का छे खबर अदरता होगा

लकी मरवत से शिफा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान प्रोडक्ट को नो जनाब लकी मरवत से हजरत अली लकी मरवत सर शरीफ होलसेल डीलर लकी मरवत अबसीन शॉपिंग सेंटर लकी मरवत शाबाज खेल सिराज जर्नल स्टोर शाबाज खेल एहसान मेडिकल स्टोर शाबाज खेल जनाब देखा के और दिन की दादा हाँ वरा सभी जोनी ना रफीजान कॉस्मेटिक्स।

0: Τώρα είμαστε με τζι, τάρτο που γεγέζει από τα σαπάρ, σε δετά σε έχω χαστηθεί.
1: Για να τι σε τάρκανα από σαπάρ και έχω με ίσμα βάσινγκ πόρταρ, έχω χαστηθεί.
0: Έσμα βάσινγκ πόρταρ, μάρα με τζι, μόχο κορτά, national or multinational, καπνέιβολ βάσινγκ πόρταρ, βαρύβι. Κούρσε αξάρ γιλάρ τα κίζε τα σαράγγε σαρά προβρέ.
1: Βέλκολ τάρκανα, τα γιλε με χάρβα τε μουτάχα κούρσε κραλέ. Χωτσε καλάνα με κούρτα ίσμα βάσινγκ πόρταρ, βοράλ σε ρικρέτη, ο στόλ κούρβαλα να χωσούλτη.
0: अच्छा मिस जी ब्याहे कुर्ता जहर सरबरो उदार तो ये या के पर इश्मा वॉशिंग पाउडर से सदा से खास खासियत थी
1: तारे खाना इश्मा वॉशिंग पाउडर खास खासियत दागा दी जे कपड़े सा पर युक्सले को जोर ना जोर दाग पर गारंटी सर खत्म करी जाखर सजुत की ओ दिनोर सरफे पर निस्बत इश्मा वॉशिंग पाउडर काम इस्तेमाल जी ओ बला खबर दा कपड़े सा पर ही पवा लोसीना नखर पवी
0: शाम इस जी चे दम रक्षला रिजल्ट ये दाई दार तो ये दाव मोता चेरता मिला भी जी
1: तारे खाना दाव तो दफा बने गलसे अंदरून ला की गेट जान से बे गाले पर शोए मार किसे देश मां मेन डिस्ट्रीब्यूटर हाफे जहीर सेब सर उधर ते मिला भी जी।

0: चाहतों के रंग अमन के संग अमन रेडियो 88.4 नेचर।
1: कभी मौसीकी के लिए सुने, कभी खूबसूरत बातों के लिए और कभी नई मालूमात के लिए आपके सुनने का खूबसूरत इंतहा रेडियो अमन 88.4 करक।
2: अस्सलामु अलैकुम कुरानो मिनवाल जयम जयम दलाल हां तासो रे प्रोग्राम द आवरी

0: Τώρα μαζί με τη Δάρτα που γεγέζει από τα σαπάρσι δε τόσα έχω χωστηρί.
1: Για να τίσε τα ρεχανά από σαπάρ και έχουμε ίσμα βάσινγκ πόρτερ ο χωστηρί.
0: Ίσμα βάσινγκ πόρτερ. Μάρα με ζή μόχο κόρτα national ο multi national. Καπνέιβολ βάσινγκ πόρτερ βοήβη. Κούρσε αξάρ γιλάρ τα κίσια τα σαράγγε σαρά προβρέ.
1: Βέλκολ τα ρεχανά τα γιλεβε χαρβάτε μουτάχαν κούρσε κραλέ. Χωτσε καλάνα με κούρτα ίσμα βάσινγκ πόρτερ βοήβολ σε ρικρέ τη. Ο στόλ κούρβολα να χωσούλ τη.
0: अच्छा है मिस जी ब्याह कुर्ता जहर सरब रो उदार तो ये या चेप इश्मा वॉशिंग पाउडर से सदा से खास खसूसियात थी
1: तारे खाना इश्मा वॉशिंग पाउडर खास खसूसियात दागा दी चे कपड़े सब युक्शले को जोर ना जोर दाग पर गारंटी सर खत्म करी जाखर सजूद की वो दिनोर सरफे पर नस्बात इश्मा वॉशिंग पाउडर काम इस्तेमाल जी और बला खबर अदा कपड़े सब ही पवात लोसीना नखर पवी
0: शाह मिस जी चे दम रक्षला रिजल्ट ये दाए दार तो ये दवा मोता चेरता मिला भी जी

हाँ बिल्कुल नंबर चुकुम देखे ना नंबर जानसरा नोट को वाले से आधी नंबर मैंने बिल्कुल कॉल को वाले से पर 0331 52 65 340 यानी कि 0331 52 65 340 दे नंबर बने बस सिर्फ और सिर्फ कोई कॉल कोई मैसेज बाप 8583 बने के सही दो मैसेज ऊपर 8583 बने के वाली छे और दिन लो कॉल चुकम दे पदे नंबर बने के वाली ठीक छ यानी कि 0331 52 65 340 0331 52 65 340 दे नंबर बने कॉल को वाली सही दो आओ मैसेज इसी के दिखे ना दबोजो 8583 बने से मिलो कालो प्रोग्राम किसे मिलो वागे नमक इदा से कभी चाहिए बदले तरफ तसी प्रोग्राम से वो संदर वो भी आओ संदर ने बाद भी

हाँ जी बिल्कुल, अबूरविदा संदरा कफे बिल्कुल द फलक नाज बनसीब आवाज के फरमाइश करो। खैर फरमाइशी प्रोग्राम न दे, हो ब्याह चुकम दे दसंदर बोर भाई

0: नो ब्याह डेरा डेरा मनाना सिखाओ देव को प्रोग्राम के यो जहान मनाना और टाइम हो चुकम दे रसरा कम दे और कॉल तर तर सी कसी काल बने छे बलसो को दिखम देना दे अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जी सु खबर के किम जरा तारा बात कर रही है करक से जी तारा कैसी हैं आप ठीक हैं
1: ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र है आप सुनाए आप कैसे हैं
0: अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक प्रोग्राम सुन रही है
1: जी जी बिल्कुल शो तो बहुत ही जबरदस्त है
0: चले बहुत शुक्रिया थैंक यू तरहान की आपने करक से कॉल किया क्या कहेंगी प्रोग्राम में
1: उसमें बस इतना कहूंगी जो टॉपिक आप लाए हैं ना पहले आप इस पे बात कर लो फिर उसके बाद अच्छा।
0: चले मैं लास्ट में इस टॉपिक पे बात करूंगा ठीक है
1: भूलना नहीं है लास्ट में आपने जरूर बात करनी
0: ठीक है बिल्कुल मैं जरूर बात करूंगा उस पर आप क्या कहेंगी इस टॉपिक के बारे में
1: इस टॉपिक के बारे में कुछ नहीं कह सकती
0: अच्छा जी चले ठीक है तरहान बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया
1: जी तो एक सॉन्ग प्ले करेंगे आप
0: अच्छा फरमाइशी शो तो नहीं है चले आप बताएं कौन सा सॉन्ग है जी
1: मुझे पता है फरमाइशी शो नहीं है बट चले कहना करे कोई बात नहीं
0: हाँ बिल्कुल फरमाइशी शो नहीं है तो चले आप बताएं अगर लास्ट में मुझे मौका मिला तो मैं प्ले करूंगा जरूर
1: नहीं नहीं आपको मौका नहीं मिलता मुझे पता है बस
0: चले ठीक है बहुत शुक्रिया थैंक यू
1: बस इससे जितने भी सिस्टर मेरी आवाज सुन रहे हैं उन सबको स्पेशल सलाम आपको सुकून वाला सलाम और
0: वालेकुम अस्सलाम थैंक यू बहुत शुक्रिया थैंक यू आपने कॉल किया बहुत शुक्रिया जी नेक्स्ट कॉल प्रोग्राम में शामिल करते हैं और उसके बाद आपके मैसेजेस जी नेक्स्ट अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम आवाज इट इज योर स्लोर द्रीमी आवाज इज स्लोर अजी सो खबर है कि जना आओ अच्छा अच्छा दोबारा दे कॉल होगा खैर दे दोबारा तुझे कॉल डबल कॉल चुका हूँ खैर दे बलता मुकाबर के सही ना डेरा मनाना कॉल के बोले यो जहान मनाना चाहिए प्रोग्राम के कॉल को दोबारा कॉल ना सिर्फ यूजल यूजल कॉल ठीक है डेरा डेरा मनाना हाँ जी दस के बीच है प्रोग्राम के तुम मैसेजेस ज्यादा शामिल करो और वही कहना चाहिए खैर आगे ना मुख्य दस के बीच सॉन्ग तरफ था प्रोग्राम से सॉन्ग शामिल भी